पैगंबर उन्हां कोल दुनिया जांदी है, पर गुरु नानक सच्चा पातशाह आप लोगां कोल जांदे रहन। बाबा काशी गए, बनारस गए, हरिद्वार गए, गया जी गए। क्यों गए? भई लोगां दा तीर्थां ते इकट्ठ हुंदा सी ते बाबा जी उत्थे अपने विचार सुनांदे सन, लोगां नूं सिद्धे मार्ग ते लांदे सन। बटाले दे लागे बिल्कुल नजदीक, क्योंकि बटाले विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे सौरा परिवार सी, ते लागे अचल बटाला है। ओ सिद्धां दा बहुत वड्डा गढ़, शिवरात्रि दा मेला लगा होया सी, ते गुरु नानक ने सुनहरी मौका तकिया, कहन लगे मर्दानिया चल। गरीब नवाज पातशाह सत बचन, भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने,

नाल ओ जेड़े लोटे वेच लोग पैसे पा रहे सन ओ लुका दिता। भाई साहब भाई गुरदास ने बड़ी प्यारी बात कही। भाई साहब कहंदे ने

बंदे नू अपनी हार हुंदी दिस पवे ना, ए आम बात है, फिर वो झगड़े ते उतर आंदा है, और तां पेश जांदी कोई नहीं। जोगियां ने गुरु नानक बाबा नाल बहस करनी शुरू कर दित्ती। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे ने, कैसी बात है,

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू सब दी मदद करन वाला है। जिसकी मदद कोई नहीं करता उसकी मदद धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह करता, और आप दी मदद अकाल पुरख वाहेगुरु आप करता है। सात जगत बोलो श्री ना सुनो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह आख्या धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू अकाल पुरख वाहेगुरु दा खजांची है। जो अकाल पुरख वाहेगुरु दे खजाने विच बख्शीशा हन तू उन्हां नू वंडन वाला है। साथ सकत बोलो श्री हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं ए धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू अकाल पुरख वाहेगुरु नू जानिया है इस वास्ते संसार विच तू महाराजियां दा महाराज है। तेरे वर्गा संसार विच कोई होर महाराज कोई राजा है ही नहीं। इस वास्ते मैं सारे संसार नू छड़ के तेरे चरणों विच आया हां।

मेरी चोली किसे ने नहीं पड़ी, इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुने जो तेरे दर ते आउंदा है उदी चोली कदी खाली रह नहीं जांदी, ओ सदा तेरे दरबार तो चोलियां भर के जांदा है। सत सहित बोलो श्री, इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु।

देग रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तेरी वर्गी कोई तेग नहीं चला सकता संसार विच, और तू सारिया का दिलों का हाल जानता है, क्योंकि तू अंतरजामी है। इस वास्ते घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाण। तेग रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। साहिबे अकलील गुरु गोबिंद सिंह, जिले हक तसलील गुरु गोबिंद सिंह। आप कहते हैं तू दुनिया दे ताज का मालक है, संसार का मालक है, और अकाल पुरख वाहेगुरु दे पाणी नू मनन वाला है। सात सगत बोलो श्री, क्योंकि तेरे जैसा संसार ते होर कोई शहनशाह ना होया और ना होएगा। तू भगत भी है, तू दानी भी है, और तू शुरवीर भी है। भगत एडा है कि जदों आनंदपुर का किला उजड़ गया, पिछे मुगल सेना लगी हुई, 500 के करीब सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के नाल

आख्या हां दया सिंह कीर्तन आत्मा दी खुराक है, आत्मा का भोजन है। कितने कु सिंह हन नाल? आख्या गरीब निवाज कोई लगभग 500 सिंह हन नाल। आख्या फिर अद्धे कीर्तन विच बह जाओ ते अद्धे थोड़ी दूरी ते मोर्चा ला के खड़ार दे सारे हो, जे दुश्मन दल आवे ते उसनू रोक के रखन। कीर्तन आरंभ हो गया, उत्थे दुश्मन दल ने चढ़ाई कर दिती, सिंह लड़ रहे हैं। इत्थे साहब जी अडोल कीर्तन बह के सुन रहे हैं। सत सगत बोलो श्री। इत्थे आशा दी वार दी समाप्ति होई। सो करे जित सिर जाए, सो करे जित सिर जाए सुध। साहब जी ने अकाल पुरख दे चरणा विच शीश चुकाया। ताई टांगू ने आके खबर दिती खुफिए कि साहब जी आ दुश्मन दल मारो मार करता आ रहा है, ते जेड़े लगभग 250 सिंह अगे मोर्चे ते खिलारे सन सारे शहीद हो गए। सत संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह दे नैन कटोरे वाग आए। और गरीब निवाज एक कीर्तन दे पिछे 250 सिंह शहीद करा दिता जी। साहब जी कहन लगे दया सिंह आ बाकी कितने बच गए हैं? आख्या लगभग 250। आख्या ए भी 250 शहीद हो जाते। दया सिंह तू भी शहीद हो जाता, मैं भी शहीद हो जाता, लेकिन असी जो इत्थे बह के अज उस अकाल पुरख दे चरणा दे नाल कीर्तन विच जुड़े हैं, उसकी जड़ी भगती की है, असी ए सौदा सस्ता कीता है। सत संगत बोलो श्री। भगत एडे ते आख्या दानी तेरे वर्गा संसार ते होर कौन है? पिता नु शहीद करा दिता धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह। आप दे उस वेले 9 साल की उम्र सी। हिंदू धर्म की रक्षा की खातर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने शहीदी पाई। आनंदपुर का किला उजड़ गया। चार साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, इन्हां सिखां दे उपरों धर्म की रक्षा की खातर चारे बच्चे शहीद करा दिते। माता नूं कुर्बान किया धर्म की खातर। सारा परिवार खेरू खेरू हो गया। आ सारा सरबंस दान कर दिता, तेरे वर्गा संसार ते होर दानी कौन होएगा? सत सगत बोलो श्री। आख्या और शुरवीरता तेरे विच किडी के चमकौर दी गड़ी विच जदों बेअंत दुश्मनां दी फौजा घेरा पा के खड़ोतियां होईयां, ते अंदर थोड़े जे सिख चमकौर दी कच्ची गड़ी, दो दो चार चार सिंह करके जाऊं बार, ते दुश्मनां दे कई दलां दे दल नूं मार मुकाऊं, ते आप फिर शहीदियां पा जाऊं। उस वेले जिस वेले बेअंत फौजां ने दुश्मन दी चमकौर दी कच्ची गड़ी नूं घेरा पा के खलारिया, ते आप घोड़े ते चढ़ के आवाज दे के गए कि हिंद दा पीर जा रहा, जे जे किसे विच हिम्मत होवे ता उसनू रोक के दसो। सत सगत बोलो श्री। अनेकां ही नू साहब जी दी तलवार त्या शो प्राप्त होई। दुश्मना दे सिर वाह के साहब जी उस चमकौर दी कच्ची कड़ी विच अगा लंघ गए। दुश्मन घेरे नू तोड़ छड़िया। तेरे वर्गा शुरवीर होर कौन हो सकता है? तेरे वर्गा भगत संसार विच कोई नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तेरे वर्गा दानी कोई नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तेरे वर्गा शुरवीर कोई नहीं। सत संगत बोलो श्री। इस वास्ते भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं, मुसव्वर खींच ले तस्वीर।

ये तुझको रिसाई है। दसम गुरु बैठे मसलत पर सभा अपनी लगाई है। यहां के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है। यहां के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है। मिला तुझ सा मुझे मुर्शद मेरी तकदीर अच्छी है। सात सगत बोलो श्री इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दी उस्तत करदे हां होया भाई साहब भाई नंद लाल जी।

संसार ते कोई प्राणी एक दूसरे दा कोई एक काज सवार सकदा है, कोई दो, कोई तीन, कोई दस, कोई सौ, मगर सारे कार्य सवारन वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां

पहला मार्ग, पहला रास्ता, पहली जुगत। सतगुरु कृपा करते ने साहब धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कहते ने प्यारे आ, कदी मच्छी नू देख ले, उदा पानी नाल किन्ना प्यार है, उदा जीवन ही पानी है। एक खिन भी ना धीरे एक पल, एक क्षण भी ओ नहीं रह सकती, दे जे पानी विचों कट दे हो ते भाई उन्हें मर जाने। जे तेरा प्यार इदां दा हो जाए गुरु नाल, इदां दा सुने किते तू गुरु नाल कर लवे ते तेरे जीवन विच पलटा ना आ जाए। शायद कहिंदे नहीं

शैव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है, एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया। पातशाह तू मेरे ते कृपा कर, किड़ी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मींह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच्छा,

गुरु नानक दी मोर ला के धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साई कितने गुण गायन करें हजूर बाणी विच कहिंदे ने

साहब जी रचना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक दे गुणा दा अथाह बयान करदे होए अपने रचना तो कृपा करदे ने ते आंदे ने

धन गुरु अर्जन पातशाह। साहब अपने मुखार बिंद तो आंदे ने एक घड़ी दिन समो को बहुत भयारे, ए मेरिया मालका एक घड़ी भी एक पल भी, तेथों जे मैं विछड़ जाना ते इंज लगदा है कितने ही जुग बतीत हो गए ने, कितना समा लंघ गया।

एटी प्यास है तेरे दीदार दी, एटी आस है तेरे दीदार दी, मेरे मालका कर कृपा मेरे दे। को ऐसा संत मोको फिर है मिला, कोई भाई गुरु दा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरु दे प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आस लगी हुई है ओ मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा विच तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंदे ने मन ऐसा ने हो करे, ऐसी प्रीत कर लै जिवें मछली ने पानी नाल कर ली, चात्रक ने पपिए ने स्वाती बूंद नाल कर ली है, भंवरे का प्यार फुल दे नाल है सुगंधी नाल है, जेड़ी प्रीत कदी टुटे ना पातशाह मेरा मालका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल।

पता नहीं किन्ना कु सियाना किन्ना कु सुगड़ है, कोई हिसाब ला सकता है? क्योंकि उसकी किरत का ही हिसाब नहीं लाया जाता। तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन समार। तेरी दिती हुई दात की समझ नहीं आती, तेरी समझ कितों आ? तेरी दात का ही मुल नहीं पाया जाता, तेरा कौन मुल पा? तेरी दात ही एडी सोहनी एडी खूबसूरत एडी जुगत वाली है, तू कि सियाना होगा? साहब कहते मत समझी वे सियाना कोई होर भी है जिसने तेन शरीर दिता है, जिसने शरीर च मन पाया, जिसने तेन वर्तन वास्ते धन दिता है, जिस दया सारिया बख्शिशा भोगदा है, ओदे नालो सियाणा होर तेनू कोई मिलेगा नहीं। ते कई बार तां इन्ना भी भुलेखा लग जांदा है, तू ऐसा समझण लग पैंदा उहने कोई गलती कीती है, मैं ठीक कर दिया। जो उहने बनाया शायद गलत बनाया, मैं उहनू ठीक कर देवां। जो उहने रचिया शायद गलत रचिया, मैं उहदे च सुधार कर देवां। अपने आप नूं ओहदे नालो सियाणा समझ बैठा होवांगा। कोई सूरत नहीं, कोई तरीका नहीं कि तू अपने आप नूं ओहदे नालो सियाणा समझ सके। जिसने तन मन धन जिन प्रभ दिया, जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनन खान। एक शब्द च महाराज सच्चे पातशाह ने सानू चेता कराया, चेता ही कराने वाली गल है। पता सारा है, भुल जाने साहिबा ने पावन बाणी च सानू उन्हां चीजां दी सारी लिस्ट तां नहीं आउंदी, लेकिन मोटिया मोटिया जिन्हां बिना बंदे दा नहीं सरदा उन्हां दा जिक्र महाराज ने कीता। तो कहते तेनू ओ चेता है, तेनू ख्याल है, जिसने तेन इना कुछ दिता है।

पादशाह तो सवाल कीते, पादशाह तुसीं अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज क्यों नहीं कीती? कहन लगे फर्क है, उत्थे रब दी कथा है, इत्थे मैं अपनी कथा कह बैठा, इसलिए अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं की। पातशाह तुहानू की लोड़ पै गई अपनी कथा सुनाण दी? कहन लगे लोड़ सी, जिस वेले तुलसीदास किसे प्यार विच आया, श्री राम नू भगवान राम कह बैठा, सूरदास बहुत ही सत्कार विच आ गया, कृष्ण नू भगवान बना बैठा। कोई ऐसा सिख उठ के मैनू भगवान ना कह बैठे, वाहगुरु ना कह बैठे, इसलिए मैनू अपनी कथा कहनी पै रही। पर जे पातशाह तुहाडे गुणा नू, तुहाडी महिमा नू वेख के कोई कह बैठे भई तू ते रब इको ही हो, तू ही रब है, ते फिर की होवेगा? हजूर ने वचन कीता

पातशाह कहण वाले कह छड़दे ने भाई गुरु गोबिंद सिंह जी ने अवतारा दे बड़ा खंडन कर दिते कि उन्होंने दिल विच कोई भेद सी फर्क सी। पातशाह कहण लगे नहीं मेरा किसी नाल वैर नहीं, मैनू जिवें वाहगुरु ने गल्लां आखियां ओ मैं संसार नूं दस रहा। दूजी गल उन्हां तों विछोड़ के जे मैं आखां मेरे पैरां दी पूजा करो तां ते मैं भुल विचां। मैं कहिंदा बई नहीं ओ भी दस रहे ने मैं भी दस रहा, उस वाहगुरु दे तुसीं भी सेवक बनो, इसलिए मेरा किसे नाल वैर नहीं। हजूर कहें

जिथे सारिया भगतों नू सन्माने उथे नामदेव जी का भी आदर किया। नामदेव जी पवित्र बाणी द्वारा मालिक दे चरणा च अरदास करते ने, कहते हे प्रभु ये संसार एक समुंदर है, ये समुंदर विच कहते जदों देवत्या ने समुंदर नू रिड़किया ते 14 रतन कढ़े, समुंदर विच बहुत कीमती नायाब तोहफे ने, पर समुंदर विच बड़े बड़े भयानक जानवर भी बैठे हुए ने। सतगुरु कहते ने एक समुंदर तो वह है जिदे विच पानी का कोई अथाह नहीं, ते एक समुंदर ये संसार है। नामदेव जी महाराज इस संसार समुंदर की बात करते ने, कहते हैं हे मालिक

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तों देवते बन।